ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ, आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: Welcome back after yet another beautiful song on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा। मतलब Sunrise Radio आप काफी सारे medium के थ्रू भी सुन सकते हैं। I hope आपको पता है। Well, DAB के जरिए आप सुन सकते हैं in Manchester. At the same time, दुनिया के किसी भी कोने में आपने सिर्फ हमारा app download करना है and then there you go. Internet के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं। Also, हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunriseradio.fm पे लॉगिन कीजिएगा। सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और the beam, beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा। So stay tuned with me. I'll see you on the other side.

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 दास ब्रैडफोर्ड 723030
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी enjoy कर रहे हैं. मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम भी नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं. Just a thought. And of course, the next song is specially dedicated to you.

साड़ी दुनिया के तमाम पंजाबियों नूं अपने वालों सत श्री अकाल कह रहा हाँ, कबूल करो इस खुशी के मौके से जिथे एडे जश्न मनाए जा रहे ने अज इंडी सगू वास्ते उसकी एक खूबसूरत पेशकश दे विच जो मेरा सब तो फेवरेट गीत है बाबियां दे चल चलिए।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
3: गलियां गलियां घूमी ते पैरां नी जुतियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, नथिंग लाइक द गोल्डन ओल्डीज। पर राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़ और द बीइंग ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं ना आप जाइएगा। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस आवर, स्टे ट्यून्ड।

0: मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

जाता है जी, बारिश हो जाती है और हवा हो जाती है, तो किसकी सुने किसकी ना सुने। तो ये तो बात है ही कि समझ नहीं आती किसकी माने बारिशों के मौसम की या वेदर फोरकास्ट की, तो या अपने दिल की। ये कहते हैं कि अपने दिल की ही माननी चाहिए, क्या ख्याल है जनाब। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाही चट्ठा। मेरा और आपका साथ रहता है हर सैटरडे, एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 2, 11 से 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहता है। हम अच्छे अच्छे से गीत सुनते हैं, अच्छी सी बातें करते हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स होती है, कुछ पोइट्री होती है, और जो हमारा लास्ट आवर होता है जो कि मेरा फेवरेट आवर है, वो है हमारा डिस्कशन आवर। क्योंकि गीत भी हम सुनते रहते हैं 24/7 आपके अपने पसंदीदा सनराइज रेडियो पर चलते रहते हैं, लेकिन जो वैसे बातें भी होती रहती हैं, लेकिन जो असल डिस्कशंस होती हैं, थॉटफुल डिस्कशंस जो होती हैं किसी अच्छे टॉपिक पे, वो बहुत रेयर सुनने को मिलती हैं। एक तो ये होता है कम लोग इस तरफ तवज्जो देते हैं, दूसरी बात ये होती है कि लोगों के पास ऐसी चीज़ों का टाइम नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें हमारे माशरे की रुख के लिए, हमारे माशरे के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे कि हमारा जिस्म होता है तो हम सोचते हैं कि ओके हम खाने वगैरह खाते रहें, इंजॉय करते रहें जिस तरह से मर्जी, लेकिन हमें हेल्थी खाना है, हमें कोई चीज़ ऐसी लेनी है जो कि हमारे जिस्म के लिए अच्छी हो, जो कि हमें हील करे। हम अपने इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हाँ हल्दी बहुत अच्छी है, वो डालनी चाहिए, लहसुन अच्छा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम समझते हैं कि हमें ज़्यादा लेनी चाहिए तो कि हमारी बॉडी को हील करे। इसी तरह से हमारी पर्सनैलिटीज़ को हील करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ ऐसी गलतियों की तरफ तवज्जो दिलाएं, अपनी तवज्जो दिलाएं और दूसरों की तवज्जो दिलाएं, और हम उसको करेक्शन की तरफ लेकर जाएं। जैसा कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहा करती हूँ, हम कौन होते हैं किसी की करेक्शन करने वाले, अपनी हो जाए तो बड़ी गल है, की ख्याल है जनाब। यही बात है। तो आज का हमारा प्रोग्राम बहुत बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे 2 डॉक्टर्स मौजूद होंगे जो कि मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स जिन्होंने कम्युनिटी में बहुत काम किया है, बहुत हॉस्पिटल्स में काम किया है, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, बहुत बहुत समझदार डॉक्टर्स। और मज़े की बात है कि वो हमारे अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं, जो कि इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में बात करके आपको समझाएंगे, मुझे समझाएंगे कि खुदा न खास्ता हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन हो जो कि मेंटल चैलेंजेस के साथ रह रहा हो या मेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटिज़म हर दूसरे घर में देखा जाता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आम है जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक, तो इस तरह की अगर चीज़ें हो जाएं तो हमारे क्या रिस्पॉन्स होने चाहिए, उसको रिकग्नाइज़ कैसे करना चाहिए, उसको किस तरह से डील करना चाहिए। ये मुझे लगता था कि हमारी इस वक्त, इस ज़माने की, इस टाइम की प्रेजेंट बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारा ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान हो कि अगर ऐसा कुछ है हमारे इर्द गिर्द या हमारे साथ हो रहा है तो हम उसको कैसे रिकग्नाइज करें और कैसे रिस्पॉन्स करें। और आजकल के ज़माने में तो बहुत ही ये चीज़ कॉमन होती चली जा रही है, तो ये अवेयरनेस होगी। आप लोग सवालात कर सकते हैं, डॉक्टर्स हमारे पास स्टूडियो में मौजूद होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं और आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप उनको अपने सवालात भेज भी सकते हैं, आप मुझे ऑफ एयर फ़ोन करके भी कह सकते हैं कि मेरी तरफ से ये सवाल पूछ लें, और अगर आप ऑन एयर पूछना चाहते हैं जब भी, यू आर मोर देन वेलकम। ये तो था आज के प्रोग्राम का तारुफ। तो एक तारुफ तो है जो कि आप हर वक्त सुनते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको सुनाते हैं, वो है कि आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 106.6 FM या 103.2 FM पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डैप पर आप सुन रहे हैं जनाब ब्रेडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर और ईस्ट लंकाशायर में। आप सुन रहे हैं ब्लैकबर्न में, बर्नली में, डार्विन में, नेल्सन में, एकरिंगटन में एंड मिल्टन कीन्स में। और जनाब हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं अपना सनराइज रेडियो

0: ढाबी में, जी हाँ ढाबी में भी। और अगर आप इन सब स्टेशंस पर नहीं सुन सकते या कोई रीजन है, कोई सिग्नल इशू, कोई प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओहे जी, तुसी डाउनलोड कर सकते हो एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर तो। वेबसाइट जनाब www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio। जी लिसन लाइव ते जाओ ते खुला सुनो। जी हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर गीत की जानिब। और हिट ऑफ द आवर के बाद आपसे होती है दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी हाँ सामीन, बरखा की झड़ी और पानी की बूंदें, क्या ही बात है जनाब। तो ऐसा है कि इस खूबसूरत से गीत के बाद, जो कि हमारा था हिट ऑफ द आवर, मैं चलती हूँ टाइम चेक की जानिब। जी हाँ, टाइम चेक कर लेते हैं और उसके बाद हमारी हो जाएगी एडवर्ट ब्रेक। एडवर्ट ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक और खूबसूरत से गीत के साथ। सबसे पहले करते हैं जनाब टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:14, यानी कि 14 minutes past 11। सवा ग्यारह कह ही सकने हैं या 11:15 कह सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे होती है मुलाकात।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
2: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.
4: वेलकम बैक सामिन, आपने गीत एडवर्ड सुनी और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले खूबसूरत गीत की जानिब। आपको शायरी सुनाएंगे इस गीत के बाद। और जनाब तारिक जुल्फी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। आपकी जानिब से एक गीत तमाम आपके दोस्तों के नाम, और जो नहीं दोस्त है उन्होंने भी दे देने हैं। तारिक जुल्फी जी की ख्याल है कि याद करेंगे, है ना? तो जी जी, तारिक जुल्फी साहब के जितने भी दोस्त हैं उनके नाम, और जो नहीं दोस्त हैं उनके भी नाम। मिलके सुनते हैं ये गीत, इंजॉय कीजिएगा।

ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक। जी हाँ, तारिक जुल्फी जी, उम्मीद है आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा और तारिक जुल्फी के जो फ्रेंड्स हैं उन सब जानने वाले उनको भी ये ट्रैक पसंद आया होगा। हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर से बात हुई, बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपसे बात करके, और आपने प्रोग्राम को सराहा, आपने तमाम प्रेजेंटर्स को सराहा, थैंक यू वेरी मच, और आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और सब प्रेजेंटर के प्रेजेंटर्स के प्रोग्राम सुनती रहती हैं, इट्स नाइस टू नो दैट। आई होप कि आप बहुत अच्छी हेल्थ कंडीशन में होंगी, आपकी सारी फैमिली ठीक होगी, और कोई प्रॉब्लम है तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि आपकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। तो समीन, मैं ये बात बार बार याद दिलाती रहूँगी जो जिन लोगों ने अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं कि आज का जो हमारा डिस्कशन आवर है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप ज़रूर वो सेगमेंट सुने, ज़रूर ज़रूर सुने, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो भी आप कर सकेंगे। हमारे पास मेंटल हेल्थ के बहुत जाने माने, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स मौजूद होंगे जो कि हमें बताएंगे कि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये जो इश्यूज हैं हमारे सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, कैसे रिकग्नाइज करना चाहिए। अगर हमें खुद दुनिया से थकन फील हो रही है और सब कुछ बुरा लग रहा है तो इसके क्या रीजंस हैं और हम इसका कैसे हल कर सकते हैं, तो अपने आप को भी इन ट्यून रखना पड़ता है रेडियो के साथ साथ। तो आप ज़रूर वो लास्ट वाला सेगमेंट सुनिएगा। हम बढ़ेंगे अब अपने अगले गीत की जानिब, और अगले गीत के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। और ये जो गीत है मैं नाम करूँगी जो मेरी अभी कॉलर आई थी उनके, तो बहन उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आएगा। आप सब भी सुन सकते हैं जी, जिन जिन के रेडियो ऑन है, इन्जॉय कीजिएगा।

0: जी हाँ, चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया। बहुत ही खूबसूरत, धीमा, अच्छी सी मेलोडी, बहुत ही खूबसूरत दो गाना आपने सुना। तो जनाब, अब ऐसा है कि अब हम जाएंगे कुछ देर में अपनी कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद होगी हमारी इवेंट्स डायरी, और इवेंट्स डायरी के बाद आपके लिए होगा एक खूबसूरत सा गीत डायरेक्ट, यानी कि उससे पहले मैं बात नहीं करूंगी, आपको गीत ही पे सीधा ले जाया जाएगा। तो उस तो सोचा कि क्यों ना फिर बात इतनी देर में होगी तो आपको एक शेर सुनाती चलूँ और उसके बाद बढ़ेंगे हम अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। शेर कुछ यूँ है, हाय हाय हाय मज़ा आएगा। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे हम तो वो हैं जो तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर हैं, हम कोई शोर नहीं जो सुनाई देंगे। जी हाँ, तो ऐसा है कि इसके साथ ही बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
5: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, The Bodyguard is at the Alhambra Theatre, bringing the smash hit musical featuring the songs of Whitney Houston to the city through the week. Also in the Bradford district, the Ilkley Food and Drink Festival returns to East Holmes Field, with food, drink and family entertainment taking place across the weekend. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, showcasing contemporary analogue photography. And still in Halifax, Peppa Pig's Big Family Show comes to the Victoria Theatre on the 13th and 14th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena, bringing together artists and exhibitors from across the UK. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry, inspired by the life of Halifax landowner Anne Lister. Over in East Lancashire, the Journey 21st Anniversary Choral Evensong takes place at Blackburn Cathedral, celebrating the choir's anniversary. In Derby, Osnabrück Day continues as part of Derby's international cultural celebrations, featuring music, arts and family activities. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, is at Milton Keynes Theatre, bringing the award-winning West End production to the city. And finally, in West London, the London Festival of Architecture continues across Hammersmith and surrounding areas, with talks, tours and exhibitions taking place throughout June. And that's your Sunrise Radio event diary.

वेलकम बैक सामेन। इंतहाई खूबसूरत गीत के बाद आपसे हुई है दोबारा मुलाकात, और इस दौरान हमारी बात हुई नदीम भाई से, नदीम मंसूर जी से। बहुत बहुत अच्छी बातें। व्हाट अ टैलेंटेड मैन, अल्लाह ताला जिसको नवाजे और अल्लाह ताला जिसको जो चाहे अता करे, क्या बात है। तो ये अल्लाह ताला की बांट होती है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नदीम भाई को नवाजा है। अल्लाह ताला इनसे इस आवाज़ से बहुत अच्छे काम ले, आमीन, और इसको कायम दायम रखे सेहत के साथ। तो जी ऐसा है कि पंजाबी गाना अकरम राही दी आवाज़ च सुनने आ ते इंजॉय करने आ। गाना कुछ यूं है जी, दिल दियां कूकां ते पंजाबी गीत होवे ते पंजाबी शेर ना होवे जचदा नहीं। चलो फिर पंजाबी शेर तुहानू सुना देने आ। पहले तैनू की लगदा है, तैनू की लगदा है मेरा जी लगदा है, तैनू की लगदा है मेरा जी लगदा है, अजकल दुख भी मैनू, अजकल दुख भी मैनू कार दा जी लगदा है। तैनू की लगदा है मेरा जी लगदा है, अजकल दुख भी मैनू कार दा जी लगदा है। ते दिल दियां कूकां सुनने आ अकरम राही दी आवाज़ च। नदीम भाई सुनियो ते इंजॉय करियो, एंड ऑल ऑफ यू एज़ वेल।

0: हाँ जी, दिल दियां कूकां, कोई नहीं सुनता साढ़े दिल दियां कूकां नूं। कोई गल नहीं जी, ना सुने रब तो सुनता है ना। सबसे बड़ी तसल्ली खुद को होती है, रब तो सुन रहा है ना। तो समय हमारा टाइम हुआ चाहता है टाइम चेक करने का, टाइम चेक करते हैं, उसके बाद हमारा फ्लैशबैक गीत होगा, नो सॉरी, उसके बाद हमारा होगा कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद फ्लैशबैक गीत होगा। और नदीम भाई, आपकी फरमाइश पर बहुत ही खूबसूरत गीत, बूंदे नहीं सितारे, कमाल गीत है मौसम के हिसाब से, वो सुनेंगे। पहले करते हैं टाइम चेक, देखते हैं टाइम क्या हुआ चाहता है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हो रहे हैं 11:45, यानी कि 11:45, यानी कि 11:45 हो गए ने जी, 11:45। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानेब।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: नफसेन जायका तुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रैडफोर्ड 7230 30।
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

क्या बात है जी, गीत की बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से। कमाल नहीं हो गया ना कमाल, बहुत ही खूबसूरत गीत। तो क्या ख्याल है, अगले गीत पर जाने से पहले कुछ शेर ना सुन लिए जाएं? सुन ही लेते हैं जी, क्योंकि कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कहते ना कोई खास नहीं। एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, एक ख्वाब अधूरा पूरा सा, एक सपना है बिन सोचा सा, एक फूल है रूखा सूखा सा, एक सपना है बिन सोचा सा, एक अपना है अनदेखा सा, एक रिश्ता है अनजाना सा, हकीकत में अफसाना सा, कुछ पागल सा कुछ दीवाना सा, बस एक बहाना अच्छा सा, जीवन का ऐसा साथी है जो दूर हो तो कुछ पास नहीं। तुमसे कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कुछ खास नहीं, तुम कह देना कोई खास नहीं। हाँ जी, ये तो अपने अंदर की फीलिंग की बात होती है, और यही बात होती है कि जो ऐसे जज्बे होते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनके लिए कोई अल्फाज नहीं होते, और कुछ ऐसे रिश्ते हमारे इर्द गिर्द बन जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, बस वो प्यारे रिश्ते होते हैं। तो कहते हैं ना, कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई ख़ास नहीं। तो बढ़ते हैं इसके साथ ही अगले बहुत ही खूबसूरत पुराना सा गीत है, लता मंगेशकर की आवाज़ में कमाल गीत है, जब भी सुना अच्छा लगा, इंजॉय कीजिएगा।

0: हाँ जी, क्या ख्याल है? हो गाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन दिल बहुत चाहता है समटाइम्स ऐसे गीत हो ना, टा टा टा। चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। तो ऐसा है कि हमारा टाइम अब बढ़ता जा रहा है और करीब जाता जा रहा है हमारी न्यूज़ ब्रेक की जानिब। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे कुछ देर में, और फिर न्यूज़ ब्रेक के बाद नेक्स्ट आवर में दाखिल हो जाएंगे, और नेक्स्ट आवर में फिर उसी तरह से गीत होंगे, बातें होंगी, फ़ोन कॉल्स होंगी। आपको एक दफ़ा फिर से याद दिला दूं, आज का जो हमारा टॉपिक मेंटल हेल्थ के बारे में है, हमारे पास स्टूडियो में दो डॉक्टर्स मौजूद होंगे। अगर आप उनके आने से पहले भी मुझे ऑफ एयर फ़ोन करके अपने कुछ क्वेश्चंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और मैं आपके बिहाफ पे पूछ सकती हूँ। और वैसे वो बात करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि किस टाइप की मेंटल हेल्थ होती है और कैसे उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि असी सारे अंदर पेच टिले ने आपस की गल है। बढ़ते हैं न्यूज ब्रेक की जाने।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at midday, an investigation started after an officer appeared to use AI to create evidential material in a number of cases. The Crown Prosecution Service says it's working with defence teams and courts which may have been affected. Derbyshire Police has removed an officer from frontline duties. No arrests have been made. The annual Trooping the Colour parade is underway in central London, marking the King's official birthday. Thousands of people lined the streets to see the King and Queen during the royal carriage procession. The armed forces' most prestigious regiments are involved in the ceremony. Charles will be joined by members of the royal family on the balcony of Buckingham Palace for a Red Arrows flypast later. Two people have been arrested after some of the England World Cup team's equipment was stolen in transit in the US. Boots and footballs were among the items taken from a van heading from Florida to Kansas City. There are renewed hopes of peace in the Iran war. Both Tehran and Washington are suggesting a potential framework is close to being finalised, despite the US recently shooting down Iranian drones. Sir David Beckham's reflected on his working class roots as he received a star on the Hollywood Walk of Fame.
3: I must admit that this is all rather surreal. I've always been a dreamer, but I could never have imagined that an honour like this would come to a working-class English soccer player like me.
2: The former England captain's been recognised for his contribution to sport and entertainment. He was joined by Lady Victoria at the ceremony in LA, as well as actor and friend Tom Cruise, who praised his work ethic. And double Olympic gold medalist Dame Kelly Holmes has joined participants in the 1 millionth parkrun in London. The landmark 5K race took place at Bushey Park this morning. That's the latest. I'm Faye De Silva.
0: वेलकम बैक सामिन, हम दाखिल हो चुके हैं प्रोग्राम के सेकंड आवर में, यानी के दूसरे घंटे में। एक बार फिर से याद दिला दूं, मेरा नाम है नाहिद चट्ठा। मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे, हर हफ्ता के रोज़ 11 से 2 बजे तक। जी हाँ, 11 से 2 बजे तक हफ्ता के रोज़ मेरी आपसे मुलाकात होती है, और हम सुनते हैं मिलकर अच्छे अच्छे से गीत, अच्छी सी बातें करते हैं, कुछ शायरी होती है, टेलीफोन कॉल्स होती हैं, और जो मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है वो होता है डिस्कशन आवर। आज के प्रोग्राम में भी ऐसा है, 1 से 2 बजे

0: में हमारे पास कोई शख्स ऐसे हैं जिनको हमें लग रहा है कि वो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो हम किस तरह से रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, और ना सिर्फ रिकग्नाइज़ कैसे कर सकते हैं बल्कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपकी टेलीफोन कॉल्स हम लेंगे, अगर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहें या उनसे आप कोई बात करना चाहें, आपके जहन में कोई ऐसी बात हो जो आपको लगे कि आप हमें समझ आनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर टेलीफोन कीजिएगा 1 से 2 के दरमियान। यह आज का हमारा डिस्कशन आवर होगा, और अगर आप में से कोई भी ऑफ एयर मुझे सवाल देना चाहें तो भी दे सकते हैं, मैं आपके बिहाफ पे उनसे आस्क कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, या फिर अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहें जब भी आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात भी आपको याद दिलानी है और बताना है कि आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 FM पर और 103.2 यानी कि 103.2 FM पर अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर और डैप पर जनाब ब्रेडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर और ईस्ट लंकाशायर में ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन, मिल्टन कीन्स और जनाब हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं डाबी में। आप सुन सकते हैं एप्पल स्टोर से या गूगल स्टोर से, हमारी वेबसाइट पर लिसन लाइव रेडियो है www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio। है ना, इन्ना लम्मा तारुफ तानो करा देता है, हुन कोई कह ना मैनु पता नहीं सी ते हुन जाने हैं जनाब अपने हिट ऑफ द आवर गीत दी जाने सुनने ते इंजॉय करने। हाय हाय हाय, पुराने जमाने का गीत है बहुत, इसकी दो लाइनें तो हर कोई गाता रहता है लेकिन आज पूरा सुनते हैं और इंजॉय करते हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

जी हाँ सामिन, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, एंजॉय किया होगा जी। शकील साहब अली से बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। और शकील साहब ने हमें बताया कि आज मेहदी हसन साहब की बरसी है। मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे बताया मैंने कहा ये तो हमें ज़रूर उनके गीत ज़रूर सुनने चाहिए और सेलिब्रेट करने चाहिए। उनके लिए हम दुआ भी करेंगे, अगर आप दिल में दुआ कर लें या उनके लिए कुछ जब टाइम मिले तो फातिहा भी पढ़ लें। लेकिन किसी के फ़न को सराहना ये भी उसको अप्रिशिएट करने वाली बात है, उसके उसके उनके काम को अप्रिशिएट करना भी हम उनकी उसमें शामिल कर सकते हैं उनकी तारीफ में। तो जनाब हम अपना जो अगला गीत होगा वो प्ले करेंगे मेहदी हसन की आवाज़ में, तो इन्जॉय कीजिएगा। बढ़ते हैं इस गीत की जानिब। जो आपने गीत मुझे बताया था शकील साहब, मैं अब वो ढूंढूंगी और फिर प्ले करूंगी। उतनी देर तक सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, फिर तो गलबंदी है ना। चलिए इन्जॉय करते हैं।

0: बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
2: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
1: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
2: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
1: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.
0: जी सॉरी सामीन, हमें गीत को थोड़ा सा एंड पे ख़त्म करना पड़ा और क्योंकि कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो चुका था और वो कमर्शियल ब्रेक आपकी खिदमत में पेश कर दी गई ऐलान के बग़ैर, बताए बग़ैर, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा करते हैं कि हमारा टाइम चेक, कभी टाइम हुआ चाहता है, हम टाइम चेक करते हैं कि क्या हो चुका है।
3: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: समय इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:17, यानी कि 17 minutes past 12। हम अपने अगले गीत की जानिब बढ़ते हैं और ये तो चित्रा जी का गीत है। बीच बीच में हम मेहदी हसन के गीत भी लगाएंगे, ज़्यादातर मेहदी हसन के गीत ही मैं ट्रैक में रखूंगी, लेकिन अभी हम सुनते हैं चित्रा जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

कहना ही क्या, जी हाँ क्या ही कहना जनाब, गम और दुख के ये इशारे तुम न समझोगे। जो दिन हमने तुम्हारे बिन गुजारे तुम न समझोगे। तुम्हें कैसे बताएं तुम हमारे वास्ते क्या हो। समंदर की कहानी में किनारे तुम न समझोगे। बस इतना जान लो एक शख्स से हमने मोहब्बत की। हमारे टूटने का खेल प्यारे तुम न समझोगे। हजारों मुश्किलों से खेल कर भी जीतने वाले, हजारों मुश्किलों से खेल कर भी जीतने वाले, ये आखिर किस जगह पर आके हारे तुम न समझोगे। हाँ जी, हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या ख्याल है। बढ़ते हैं मेहदी हसन के एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक की जानिब। उम्मीद है आप वो भी इंजॉय करेंगे, एंड प्रॉमिस एनो में आखिर तक लेकर जाऊंगी। जी हाँ, बढ़ते हैं इस ट्रैक की जानिब, अब के हम बिछड़े।

जी समीन, हमारा गीत जो था वो चल रहा था और हमारी कॉल हमने मौसूल हुई जनाब मुदस्सर कियानी साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। और एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दिला दूं जनाब कि हमारा आज का जो टॉपिक है, जिस तरह से जो मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है प्रोग्राम का लास्ट आवर, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, उसमें हम बात करते हैं अपने आप को सुधारने की। जी हंसी कौन होने या किसी और नु सुधारन वाले, आप भी सुधर जाइए तो बड़ी गल है, की ख्याल है। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। इसमें हम रिकग्नाइज़ करेंगे कि हमें कैसे पहचानना चाहिए कि कहीं हमारे इर्द गिर्द कहीं पे कोई पर्सन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर या हमारी कम्युनिटी में कोई भी मेंबर अगर कहीं स्ट्रगल कर रहा है तो उसको कैसे रिकग्नाइज़ किया जाए, और अगर हमने रिकग्नाइज़ कर लिया है तो हमारे कैसे रिस्पॉन्स होने चाहिए। और आपस की गल है, मेरी तड़ी गल है, अपना ही पेज ढिला हो रहा है, किस तरह पता चले। हाँ जी, पेज तो सबके ही ढिले हो रहे हैं, क्या ख्याल है। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मौजूद मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आपकी हम टेलीफोन कॉल्स ले सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हो तो हम मुख्तसर कॉल रखेंगे अगर आप सवाल करना चाहें तो। वैसे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या बात करनी है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आपका सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप ऑन एयर करना चाहें, जब भी खुली इजाज़त है जी, लेकिन अगर आप ऑन एयर बात नहीं करना चाहते और मेरे थ्रू आप अपना क्वेश्चन उन तक पहुँचाना चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी ड्यूरिंग द ट्रैक। आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपना सवाल दे सकते हैं। और हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा आजकल के दौर का सबसे बड़ा मसला यही है यार, मेंटल पीस ही नहीं है, की ख्याल है। मेंटल पीस होएगा तो कोई कम करेंगे ना। जी हाँ, मेंटल पीस कैसे लाया जाए, कौन सी जादू की छड़ी है, आज हम पूछेंगे अपने डॉक्टर से। जी हाँ, आप हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो। तो टाइम हो चुका है जनाब हमारा जो है कमर्शियल ब्रेक का, तो हम बढ़ेंगे अभी कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारा एक और होगा मेहदी हसन का गीत, मेहदी हसन साहब का गीत। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज मेहदी हसन साहब की बरसी है, यानी कि उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो हम उनके गीत कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस आवर में प्ले करें। और उसके बाद जनाब जो हमारा नेक्स्ट आवर होगा उसमें हमारी बातें ज़्यादा होंगी, डिस्कशन ज़्यादा होंगी। हाँ जी, मैं डिस्कशन कह रही थी, है ना, डिस्कशन भी सुन सकते हैं। तो डिस्कशन ज़्यादा होंगी, उसमें बातें ज़्यादा होगी, अगर कहीं पर गैप हुआ तो हम कोई ट्रैक ज़रूर प्ले करेंगे। बढ़ते हैं अपनी कमर्शियल ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा और सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दाला, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: वाह, क्या ही खूबसूरत गीत, क्या ही खूबसूरत ट्रैक मेहदी हसन की आवाज़ में आपने सुना, कहा जाता था जबकि इंडिया में उनको कहा करते थे कि उनके गले में भगवान बोलता है। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही यूनिक आवाज़। आपने ये गीत सुना और उम्मीद है आपने इंजॉय भी किया होगा। बीते हुए कुछ दिन ऐसे हैं, क्या बात है जी, कुछ ताल्लुक भी नहीं फिर भी खफा हूँ तुझसे, है ना, ऐ तो गलत मजा है। कुछ ताल्लुक भी नहीं फिर भी खफा हूँ तुझसे, जाने किस मान पे रूठ गया हूँ तुझसे, मुझे कम उम्र समझ कर मेरी तजहीक न कर, मैं मोहब्बत में कई साल बड़ा हूँ तुझसे, ऐ चट्टानों की तरह मुझको दबाने वाले, देख चश्मे की तरह फूट बहा हूँ तुझसे, मेरी रग रग तेरी रग रग से जुड़ी है जाना, जाहरी तौर पे तो दूर खड़ा हूँ तुझसे, बेवफाई का तो बेमिसल खिलाड़ी है मगर, बेवफाई का तू बेमिसल खिलाड़ी है मगर, अब तो इस खेल में भी जीत रहा हूँ तुझसे, वैसे तूने तो बड़ा मकर किया था वरना दुनिया, सिर्फ अल्लाह ने बचाया तो बचा हूँ तुझसे, ए उदासी मैं अदब से अदब इसलिए करता हूँ तेरा, आहा, ए उदासी मैं अदब इसलिए करता हूँ तेरा, हिज्र के जितने भी सबक हैं मैं पढ़ा हूँ तुझसे, यार फारिस मेरे किस काम की अच्छाई तेरी, उम्र भर साथ रहा फिर भी बुरा हूँ तुझसे, क्या बात है जी, क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत शायरी। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब। जी हाँ, अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ेदार गीत है, क्योंकि मैंने कहा था कि मेहदी हसन के गीत भी होंगे और बीच में मिले जुले भी गीत होंगे, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हर तरह की चॉइस रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लिसनर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चॉइस होती है उनकी गानों की, गीतों की, ट्रैक्स की। तो अगला जो गीत है वो किशोर कुमार की आवाज़ है, मेरे दिल में आज क्या है, हाँ जी बारिश के मौसम में आपके दिल में क्या है हमें बताइएगा।
1: आज

0: मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी मांग फिर संवारूं, तेरी मांग फिर क्या जुल्फ सजा दूं कि मांग सवारूं या सुलझा दूं। एक ही बात मतलब है जनाब, कंघी करनी है ना, सिंपल बात है, ब्रश करो बालों में। तो गीत बहुत ही खूबसूरत था, आपने इंजॉय किया होगा। तो सामेन, वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। तेरी शर्तों पे अगर करना है तुझको कबूल, तेरी शर्तों पे अगर करना है तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहाँ देता है। क्या ख्याल है जनाब। हम बढ़ते हैं अब अपने टाइम चेक की जानिब, देखते हैं कि हमारी स्टूडियो की घड़ियां टाइम क्या बता रही हैं। टाइम चेक के बाद होगा जनाब हमारा कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद हमारा फ्लैशबैक गीत होगा, बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक गीत है, एंजॉय कीजिएगा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले कर लेते हैं टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी जनाब, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:43 नहीं बल्कि 43, अभी 43 हो गए, यानी कि 12:43, 12:45 भी कह लें जी, 1.5 मिनट का ही गैप है। सी इज 12:43 एट सनराइज रेडियो, यानी कि ब्रेडफोर्ड और उसके मुजाफात में। बढ़ते हैं हम अपने कमर्शियल ब्रेक की जानेब, और कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद होती है आपसे मुलाकात, बल्कि कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा हमारा फ्लैशबैक गीत और फिर आपसे मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।

चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हाँ जी, शुरू शुरू दिया गल्ला ने सारियाँ, ओ या तो फिर शादी तो पहले दिया गल्ला ने, चौधरी का चांद हो बाद में क्या होता है, परे मुँह कर तेरी शक्ल ऐसी, तेरी शक्ल वैसी, क्या क्या बातें होती हैं कि वो ऑन एयर कहने का दिल भी नहीं चाहता, लेकिन हमें सबको बताया है ना। ए चौधरी ने चांद लिया गल्ला, बस अब अव्वल इश्क की बातें हैं जनाब। या पुराने ज़माने में होता होगा, अब आजकल कौन कहता किसी को चौधरी का चांद, बस ये कहते हैं यू लुकिंग ऑलराइट, ऐसे बोलते हैं। लेकिन चलते आए, हमने तो गाना सुनना है जी, हमने गीत सुनना है। उम्मीद है आपने फ्लैशबैक गीत इंजॉय किया होगा। तो हम अब बढ़ेंगे अपने अगले गीत की जानेब। चाहे लोग बोलियाँ बोलें, इंजॉय कीजिएगा।

मैं तैयार मनाना नहीं, चाहे लोग बोलियां बोले। हाँ और क्या, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्या ख्याल है? तो पंजाबी का अगला गीत होगा, और कैसे हो सकता है पंजाबी का गीत हो और पंजाबी की शायरी ना हो जनाब, क्या मज़े की शायरी है, हंसिएगा नहीं? अच्छा पंजाबी की शायरी कुछ ये है जनाब के, रब्बा नस्ल मुका एने सोने लोकां दी, यानी कि सोने लोकां दी नस्ल ही मुका दे, कैसी गल है? रब्बा नस्ल मुका एना सोने लोकां दी, रवे एक ना इस जहान उत्ते, एक फजर मरे एक शाम मरे, मेला लगे लग्या रहे कब्रिस्तान उत्ते, एना सोनिया दा इंज मातम होवे, लब्बे कफन ना किसे दुकान उत्ते, ए यारी लाके भूल वेंदन, हाय ए यारी लाके भूल वेंदन, हाथ रख के पाक कुरान उत्ते। कितना दिल दुखाया होगा उसने, और क्या उसने मज़े की बात की है, रब्बा नस्ल मुका एना सोने लोकां दी, रवे हिक ना इस जहान उत्ते, हिक फजर मरे हिक शाम मरे, मेला लग्या रहे कब्रस्तान उत्ते, एना सोनिया दा इंज मातम होवे, लब्बे कफन ना किसे दुकान उत्ते, ए यारी लाके भूल वेंदन, हाथ रख के पाक कुरान उत्ते। नूरजहां क्या कहती हैं, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना।

जी हसामीन, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं अपने न्यूज़ ब्रेक के बाद, और जिस आवर का इंतज़ार था वो आवर आ चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ऑफिस में, बल्कि न कि ऑफिस में, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स, और हम उनकी उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर में मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दूं कि मैं हूं नाहिद चट्ठा, मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 2, यानी कि 11 से 2 बजे तक। हम एवरी सैटरडे 11 से 2 बजे तक मिलते हैं, अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी सी शायरी होती है, कुछ गीत होते हैं, कुछ आपकी टेलीफोन कॉल्स होती हैं, और जो मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है वो होता है डिस्कशन आवर। और आज की डिस्कशन आवर में, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू ही से आपको बताया था, कि हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम डिप्रेशन की भी बात कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ इलनेसेस की भी बात कर सकते हैं, इसके अलावा चैलेंजेस की, जो मेंटल चैलेंजेस होते हैं उसकी भी बात कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैंने कहीं पर पढ़ा, जब मैं ड्राइव कर रही थी तो वहाँ पर किसी कार के पीछे लिखा हुआ था कि बी पेशेंट

0: मैसेजेस एट द मोमेंट. हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये अज्यूम खुद ही करना चाहिए कि कोई भी किस टाइम भी अगर कोई स्लो ड्राइव कर रहा है या कोई उससे कोई गलती हो गई, उसने सिग्नल बाय मिस्टेक दे दिया और उसके बाद उसने करेक्शन कर लिया है, आपको हाथ का इशारा दे दिया कि आई एम सॉरी, तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए. कोई थोड़ा स्लो चल रहा है तो थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं किसी के साथ क्या उसके ब्रेन में चल रहा है, क्या माइंड में चल रहा है. तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. यही हमें एक महज़ब शहरी, महज़ब सिटीज़न होने का सबूत दिखाती हैं कि हम कितने महज़ब हैं और हमारा मेंटल लेवल क्या है. जी समीन, एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो 100.6 FM पर और 103.2 FM पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर. डेप पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीथली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में और मैनचेस्टर में. ईस्ट लंकाशायर में जनाब आप सुन रहे हैं ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन और मिल्टन कीन्स में. और जल्द ही हम लॉन्च करने वाले हैं डर्बी में. अगर आप इन सब वेब स्टेशन से नहीं सुन सकते तो आप सुन सकते हैं हमें एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वेबसाइट पर. जी हाँ, www.sunriseradio.fm पर सनराइज रेडियो आप सुन सकते हैं www.sunrise.radio पर. जी सबसे पहले मैं बढ़ती हूँ अब अपने मेहमानों की जानिब. जी हाँ, हमारे पास बहुत ही मौजज़ हमारी माशरे में जिनकी ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे साथ मौजूद हैं टू मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स. जी हाँ, एक हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अहमद साहिबा, जो कि ब्रेडफोर्ड के बहुत ही बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से सर्विसेज देती हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं. और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा के साथ हमारे साथ एक और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जैव. जी हाँ, ही इज़ वेरी गुड और वो बहुत ही मेंटल हेल्थ के हवाले से पेशेंट्स की तो वो जान है. जी हाँ, कुछ पेशेंट्स को मैं पर्सनली भी जानती हूँ जिन्होंने उनके साथ उनकी हेल्प ली है और everybody likes him so much. और डॉक्टर साहबा के लिए तो वैसे ही सब के लिए बहुत बहुत बहुत दिल में रिस्पेक्ट है. तो मैं बढ़ती हूँ अपने सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन करते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम नाहिद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द शो.
0: यू आर वेलकम, यू आर वेलकम. हाय जैव, यू ओके?
2: अस्सलाम वालेकुम यार, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू द शो.
0: यू आर मोर देन वेलकम, बल्कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस स्टूडियो में आए. तमाम मज़ाहिब से, तमाम एथनिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले जो उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश समझते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बहुत फ़ायदे का सेगमेंट होने वाला है. तो सम इन, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर की जानिब. अगर आप हमें इस दौरान फ़ोन करके अपना कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से तो आप हमें दे सकते हैं. हिट ऑफ द आवर ज़रूरी होता है प्ले करना. इसके बाद हम बढ़ेंगे और हम अपने मौजूद मेहमानों से बातचीत करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से. अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको आपका क्वेश्चन ले लूँगी. अगर आप ऑन एयर जाना चाहें जब भी आप ऑन एयर जा सकते हैं, अदरवाइज मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूँगी सुनने के लिए डॉक्टर साहिबा और जैव की अच्छी अच्छी बातें. और हम सब जितना सुन लें उतना बेहतर है, बल्कि एक आवर बहुत थोड़ा लग रहा है. मैं बहुत बोलती हूँ ना, अब नहीं बोलूँगी. बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर की जानिब.
3: सनराइज रेडियो, हिट आफ्टर हिट, द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो. सनराइज रेडियो, हिट ऑफ द आवर.

0: चल छैया छैया छैया, जी हाँ छैया छैया, चले धूप ना लग जाए। आजकल तो यहाँ पे तो हम धूप ढूंढते हैं जनाब, मिल जाए धूप, छैया छैया को छोड़ो, तो धूप धूप सांग होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि टाइम चेक करते हैं, और टाइम चेक के बाद हमारा एडवर्ट ब्रेक, और फिर जी हमारी मेहमानों से बात होगी जिसका इंतजार था हम सबको।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी इस वक्त स्टूडियो की घड़ियों पे हुआ चाहते हैं 1:15, यानी कि 15 मिनट्स पास्ट 1। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, सुनते रहिए सनराइज रेडियो।

0: वेलकम बैक समीन. आपने सुना गीत और आपने हमारे कमर्शियल ब्रेक सुनी. अब इसके साथ ही हमारा यह सेगमेंट शुरू हो चुका है. आप मुझे भी फ़ोन करके क्वेश्चन कर सकते हैं और आप ऑन एयर भी क्वेश्चन कर सकते हैं. इस कमर्शियल ब्रेक के दौरान हमें एक कॉल मौसूल हुई और बल्कि ये बहुत से लोगों का मसला है. मैं डॉक्टर अहमद से पूछना चाहूँगी और जैव से कि व्हाट डू यू थिंक कि जब वाकई अब आपका एक रिलेशन ब्रेक हो गया पास्ट में या आपके पास एक बैड एक्सपीरियंस हो गया, ज़रूरी है ज़रूरी नहीं कि शादी हो या आपका वैसे किसी के साथ रिलेशन बना था या फिर शादी का, और उसके बाद आपके साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो गया, आप ब्रेक हो गए, आप टूट गए, आपने अपने आप को दोबारा कलेक्ट किया और अपने आप को समझा कि आप दोबारा एक रिश्ते में गए, तो आप उसके साथ दोबारा कनेक्शन नहीं बना पाते. इससे ये होता है, आप तो सफ़र करते ही करते हैं लेकिन जो आप जो दूसरा पार्टनर होता है वो भी सफ़र करता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट डॉक्टर अहमद?
1: थैंक यू नाहिद फॉर लेटिंग अस जॉइन योर शो. हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली रिलेटेड है एक सोशल स्ट्रेसर से. किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा गुजरा है, कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा रीज़न जिसके बाद रिलेशनशिप में रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद दे आर ट्राइंग टू रिज्यूम द कॉन्टैक्ट या वो आपस में सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं. बट हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है. ट्रॉमा के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं और अगर लोग साथ रह रहे हों और उसी सिचुएशन में उसी घर के माहौल में रह रहे हों, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रॉमा वैनिश हो गया. इसके लिए आपको इस बात को सबसे पहले एक्सेप्टेंस है और ये अंडरस्टैंडिंग है सारे फैमिली मेम्बर्स में कि थिंग्स आर डिफरेंट और हालात वैसे नहीं रहेंगे जैसा पहले थे. एंड टू प्रोसीड विद इट, क्योंकि सोशल स्ट्रेसर्स आपका ट्रिगर है, आपको ये खुद असेस करना पड़ेगा कि क्या ये वर्थ करता है कि आप इस स्ट्रेसर में मुसलसल रहें, क्या ये रिजॉल्व हो सकता है. चीज़ों को आपस में, डिस्कशन इज़ द की. अगर आप आपस में बैठकर चीज़ों को हल कर सकते हैं, करें. अगर आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, दे आर सिंसियर टू यू, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, चीज़ें बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो सकती हैं. इस पूरे प्रोसेस के अंदर जिसने ट्रॉमा सहा है, जो कि दूसरे लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे, बट कोई चीज़ किसी के लिए ट्रॉमा होती है और किसी के लिए नहीं होती. ट्रॉमा को हम बहुत सब्जेक्टिव लेते हैं. ट्रॉमा एक बंदा जिसको वो ये लगे कि ये बात मामूली है, ज़रूरी नहीं है कि जिसने वो सफ़र किया है उसके लिए भी वो उतनी ही मामूली हो. ये इंसान की पूरी ज़िंदगी पर असर डालता है. उसके साथ मूड के प्रॉब्लम होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं. हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि लोग डिप्रेशन को नहीं मानते, जैसे कि बाकी सारी मेंटल इलनेसेस को नहीं मानते, डिप्रेशन को भी नहीं मानते, अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन को भी नहीं मानते, जो कि किसी भी चीज़ की सूरत में एकदम से बंदे का रिएक्शन होता है. बंदा शॉक में चला जाता है, वो फंक्शन नहीं कर सकता, अपने अंदर कैद हो जाता है और अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर सकता. उसे परसीव किया जाता है कि ये मर्द या ये औरत मकर कर रहे हैं एंड दे आर पुटिंग इट ऑन, और या इनके कोई और मकासद हैं और दे आर जस्ट यू नो प्रटेंडिंग. हमें ये माइंडसेट छोड़कर आगे बढ़ना होगा. और जो कॉलर थे उनके हिसाब से, या किसी भी सूरत हाल में जब आपके साथ कोई सोशल स्ट्रेसर्स हो, कोई ट्रामा गुजरा हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बरीवमेंट भी हो सकती है, किसी किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इवन मूव टू अ न्यू हाउस, दिस कैन बी अ ट्रामा. आप नए माहौल में गए हैं, आप इमिग्रेंट होकर आए हैं, इमिग्रेशन करके आए हैं, एनीथिंग कैन बी अ ट्रामा. हमें उस ट्रामा को परसीव करना है और उसके बाद उसके हिसाब से देखना है कि अगर आप उस सोशल स्ट्रेसर्स को मूव कर सकते, नहीं कर सकते, तो देन यू हैव टू हैव अ काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जिसमें आप डिस्कस कर सकें, चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें. अगर चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसके लिए काउंसलिंग की हेल्प अक्वायर कर सकते हैं, विच इज़ विथ योर जीपी. आपके जीपी आपका पहला सोर्स होते हैं जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट करके किसी भी ट्रॉमा के सिलसिले में काउंसलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसे आईएप सर्विसेज कहते हैं. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनसे आप खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और मैं इसी शो के तवासत से आपको कहना चाहती हूँ नाहिद कि जो नंबर्स हैं जो कि जिनको आप हेल्पफुल नंबर्स हैं जिन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट एंड यू कैन डिस्प्ले इट ऑन योर वेबसाइट, जो कि लोग क्लिक करके देख सकते हैं एंड दे कैन हैव दोज नंबर्स, यू नो, हेल्पफुल नंबर्स. अगर ये बात इस नहज तक आ गई है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है या अपने आप को नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो कौन से नंबर्स हैं जिन पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं?
0: लेकिन बहुत बहुत यूजफुल बात है डॉक्टर अहमद आपकी. लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ए पर्सन है और एक बी है, ए के साथ एक ये मिसहैप हो गया और अब वो ट्रॉमा में है और अब उन्होंने बी को मैरी कर लिया, अब वो बी के साथ रह रहे हैं, तो ए का जो सा है पिछला ट्रॉमा उनके साथ है, तो अब जो उसके पार्टनर है बी, उसको इसको कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए? अब वो उसको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे साथ अटैच नहीं हो पा रहा, इसका अटैचमेंट इशू आ रहा है, तो अब बी को कैसे उसके साथ रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, या किस तरह की उसकी उस ए जो पर्सन है जो नहीं अटैच कर रहा उसको हेल्प करनी चाहिए कि वो उसके साथ अटैच हो जाए?
1: इसमें बहुत सारे एवेन्यूज हैं। एक की एग्जांपल तो आपने अभी दी थी कि गाड़ी के पीछे लिखा है द पर्सन इज चैलेंज्ड, तो बिल्कुल उसी तरीके से हर डिसेबिलिटी दिखती नहीं है, हर प्रॉब्लम दिखता नहीं है, मेंटल हेल्थ स्पेशली लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते क्योंकि वो दिखता नहीं है, उसके कोई ऐसे टेस्ट नहीं होते जिनके बेसिस पर आप ये कह सके द टेस्ट इज पॉजिटिव यू हैव दिस इलनेस, तो इसलिए ये चीज़ लोगों में एक्नॉलेज नहीं होती। दूसरी बात, जब एक ट्रॉमा था तो उससे एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाने की जल्दी क्यों?
0: हाँ,
1: ये हमारे बहुत सारे सोशल स्ट्रेसेस होते हैं जिसमें शादी को हर चीज का सलूशन माना जाता है।
0: एग्जैक्टली, ऐसा ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा।
1: हाँ, और चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, डिप्रेशन वेरी कॉमन, कभी डिप्रेशन होता है उसे रिजोल्व करने के बजाय कहते हैं इस लड़के या लड़की की शादी कर दो,
0: और इस एंगर इश्यूज पे भी कहते हैं जी लड़का चीजा सुट रहा है, चीजा तोड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा।
1: उससे आप प्रॉब्लम को एक नहीं रहने देते, आप प्रॉब्लम को डबल कर देते हैं।
0: लेकिन अब जो पर्सन जो शादी होकर आया है उस बंदे के साथ जिसके साथ ट्रॉमा था, उसको कैसे इस चीज को हैंडल करना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए? पेशेंस तो डेफिनेटली चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए, इसके अलावा कोई और ऐसी टेक्निक हो जिस जो हेल्प कर सके?
1: सबसे पहला रोल तो उन लोगों का तो होता है जो कि आसपास होते हैं, जो कि देख रहे हैं कि देयर इज एन इशू और वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। इफ़ यू ब्रश इट अंडर द रग इट विल नॉट डिसअपीयर। दूसरी बात कि जो आपके बी पार्टनर है जो कि इस रिलेशनशिप में है, हमारे अंदर जो मादा कम है वो है लिसनिंग का।
0: हाँ,
1: हम सब बोलना चाहते हैं, अपनी परेशानी बताना चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरे की परेशानी सुनने को तैयार नहीं है। तीसरी चीज़ है टू गेट द नॉलेज और एक्सेप्टेंस सीखें कि क्या चीज़ इसको रिजॉल्व कर सकती है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद। हमारे साथ और भी कॉलर्स आ रहे हैं लाइन पे, हम ऐसा करते हैं कि हम ऑफ एयर उनकी कॉल लेते हैं पहले, और अगर वो ऑन एयर आके बात करना चाहें तो हम ऑन एयर बात करते हैं, और फिर जब अगर वो ऑफ एयर करना चाहें तो मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने पहले सवाल किया था, एंड थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल है डॉक्टर अहमद के जवाब से आपको ज़रूर कुछ इल्म मिला होगा और कुछ हासिल हुआ होगा कि कैसे करना चाहिए। ट्रैक लगाती हूँ और मैं अपने इन कॉलर की कॉल मौसूल करती हूँ।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम एम खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: जी बिल्कुल, आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है, मेरी भी आपको आ रही है ना?
0: जी हाँ, मुझे आपकी बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। एम खान साहब, हमारे साथ बहुत ही मोजस, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेंटल हेल्थ के डॉक्टर और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आप मेंटल हेल्थ के बारे में, जहनी दबाव, डिप्रेशन के बारे में उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, इन कीमते हीरे जवाहरात जो रखने वाले लोग हैं, अब किस तरह इनको कैसा जादू लेकर यहाँ रेडियो सनराइज पर कौम और मिल्लत के जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए कैसा आपने खूबसूरत प्रोग्राम बनाया। मैं बिलखसूस जितने डॉक्टर, दो हैं या तीन हैं?
0: जी दो हैं जनाब।
1: लेडी हैं दोनों या मर्द हैं?
0: एक मर्द हैं एक लेडी हैं।
1: मैं लेडी डॉक्टर का दिल की गहराई से शुक्र गुजार हूँ और इनके वालदेन को अदिया तबलीग और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के लिए जो इनको उन्होंने इतनी मुश्किल से हाईलाइट किया, डॉक्टर बनाकर कौम और मिल्लत के वक्फ किया। इसी तरह डॉक्टर साहब के वालद वालदा को भी मैं इस अजीम नेमत जो अल्लाह ने इनको दी है, इस नेमत के सच्चे जो कौम और मिल्लत को फायदा पहुँचेगा उसका, इनके वालदेन का, इनके खानदान का वो सारा सरमाया आज इनके जरिए कौम और मिल्लत को जो पहुंचा, उस पर तरफ में आपकी तवज्जो डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहब की तो जो चाहता हूँ। मेरा पूछने का ये पहला प्रोग्राम है। मैं घोटे का ऑपरेशन कराया, इससे बाद में अगर टाइम मिला तो बता देना, लेकिन लोगों के जो मामलात नीजी जी नीज करते हैं उनके पहले मामलात करें। मेरे घोटे का ऑपरेशन हो चुका है, इन लोगों की दुआ से डॉक्टर ने बड़ा मेरा हौसला अफजाई की अस्पताल में।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो ये जो डिप्रेशन के मरीज हैं, हमारी खवातीन, बच्चियां, बच्चे, बूढ़े जवान, उनके लिए उनको सा नुस्खा फैमिली बहनों को, भाइयों को, कबीले वालों को किस तरह समझाएंगी कि ये जो मामला है ये डिप्रेशन का या हेल्थ का, ये कोई इतना आसान मामला नहीं कि आपने गिलास में पानी पाया और पी लिया वो बीमारी से शफा दी हो गई। नहीं नहीं, इसके लिए ये जो नुकात बयान करेंगी वो करेंगे डॉक्टर साहब, इनको दिल में बिठाने की जरूरत है। और मैं अर्ज करूँगा कि ये हमारे फैमिली में हमारे जो मामलात हैं उनमें ऐसे मामला जब होते हैं तो हमारा डॉक्टर पंजाबी जबान में कहता है दिल दिल करदा मैं कोड़ बिठा के चलो प्राणी दर्द छेड़ा। हमारी कौम और मिल्लत में जो बीमारियां जिस वक्त लाहक होती हैं, हम अपनी फैमिली के ऐसे मामलात, ऐसी चीजें हाईलाइट करते हैं जो बीमार की बीमारी में डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर को हाईलाइट किया जाए, उसको बजाय कमी करने के लिए
0: बढ़ा देता है।
1: भाई बहन को कौन सी जबान, इंग्लिश में कौन सी बोली चाहिए, पंजाबी में कौन सी जबान बोली चाहिए, उर्दू में कौन सी जबान बोली चाहिए जिससे उनकी बीमारी में कमी लाहक हो।
0: जी आपका सवाल पहुंच गया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एम खान साहब, हमेशा की तरह आपने बहुत ही बहुत अच्छी बात की। तो हम ऐसा करेंगे कि मैं कमर्शियल ब्रेक पे अभी जाऊंगी और कमर्शियल ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी इस बात का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। चौधरी रुखसार जी, आपकी कॉल हमसे मिस हो गई, प्लीज़ आप मुझे ब्रेक में कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब सामेईन, और कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01 274 288 252 today to arrange your viewing.
4: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
5: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
4: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
5: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
4: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.
0: हाँ जी समीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और कॉलर जनाब चौधरी रुखसार साहिब, हम उनको भी ऑनर लेते हैं और उनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम जवाब लेंगे मेडिकल प्रोफेशनल से. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترمہ مکرمہ معزمہ عالی جناب عزت ماں نہایت ہی قابل عزت نہایت ہی قابل رسپیکٹ میری پیاری آپی نائب جی, السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹر نون.
0: وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ, اتنی عزت دیتے ہیں نا آپ, بہت شکریہ.
6: میں پہلے تو آپ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس نازک ٹائم میں مجھے ٹائم دیا, کیونکہ میری بریک جو ہے نا آلریڈی ختم ہو چکی ہے, لیکن یہ آپ کی محبت ہے, آپ کی چاہت ہے, آپ کا بڑا پانا, یہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے جو میرے جیسے بندے کو آپ نے نا دو منٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو میری طرف سے نہایت محبت, نہایت قیدت, نہایت چاہت, نہایت الفت سے محبتوں برا, چاہتوں برا, الفت برا, جو ہمارے مہمان آپ کے اس پیارے ریڈیو اور آپ کے اسٹیج سے اور آپ کے توسل سے تشریف فرما ہیں, ان دونوں کو جناب محترم قابل عزت ڈاکٹر احمد صاحبہ اور جناب محترم عزت ماب جناب نہایت ہی قابل رسپیکٹ ڈاکٹر جیب صاحب کو محبتوں برا, چاہتوں برا سلام اور گڈ آفٹر نون.
7: جی السلام علیکم چودھری صاحب.
6: جی وعلیکم السلام. معذرت چاہتا ہوں کہ میرا نازک ٹائم بہت ہے, آئی ایم ویری سوری کہ آئی کانٹ اسپیک انگلش, بٹ میری انگلش ایڈی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں اردو میں ہی سوال کرنا چاہوں گا آپ سے.
0: کوئی گل نہیں چودھری صاحب, سارے اندر یہی حال ہے, ایزی فیل کرو. صحیح ہے نا. چلو جی, ٹائم تھوڑا بھی تیز سوال کرنے ہیں. ہاں جی,
6: سب سے پہلے تو بے حد مشکور اور ممنون ہوں. تو میرا سوال بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ اتنے کہتے ہیں نا کہ معیاری نہیں ہے, لیکن کیا کریں پھر. تو یعنی کہ ایک ہوتا ہے پاگل, ایک ہوتا ہے دیوانہ, ایک ہوتا ہے مجنون, ایک ہوتا ہے شدائی, کیا یہ دونوں, یعنی کہ جتنی میں نے الفاظ بولے ہیں, کیا سارے ایک ہی کنڈیشن میں آتے ہیں یا ان کی علیحدہ علیحدہ کوئی کنڈیشن ہے؟ ٹھیک ہے, ایک تو میرا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے
0: جی جی.
6: تو باقی اب جب بھی آپ نے بولا کہ شادی کے بعد بندہ جو ایسے ہوتا ہے یا شادی سے پہلے ہوتا ہے, تو پلیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاگل بندہ شادی کرتا ہے کہ شادی کر کے بندہ پاگل ہوتا ہے؟
0: مجھے لگتا ہے دونوں ہی پاگل ہیں, بندہ ہے ہی پاگل, سارے پیچ ٹلے نے.
6: اچھا, وہی نا, کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, امی ابو جب باتیں کرتے تھے نا, تو ہم بیچ میں بولے نا, تو کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہو, آپ نا ابھی چھوٹے ہو, آپ نا بولو بڑوں کے بات
0: نہیں. ایسے الفاظ تو میرے خیال ہے بچوں کو کہنے بھی نہیں چاہیے کہ آپ پاگل ہو اور اس طرح کی باتیں بچوں کو کہنی
6: نہیں. جب بڑے کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے بیچ میں نہ بولو کہ ہم بڑے بات کر رہے ہیں. آپ تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر جب ہم بولتے ہیں نا ابو جی ہمیں عید ہی دو, جب ابھی عید گزری ہے تو عید ہی دو. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہو آپ پاگل ہو, چھوٹے ہو, عید مانگ رہے ہو. اب بتائیں مجھے کہ ہم بڑے کب ہوں گے. ٹھیک ہے,
0: یہ بات ہے.
6: جب ہماری شادی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر جب کوئی عرصہ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے, میں تمہارے بغیر مار جاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے نا, پھر کہتے ہیں پرا مار, ادھر مار, جیسے آپ پہلے مار رہے تھے.
0: جی جی بالکل, آپ کا سوال پہنچ گیا. ایک اور کالر ہیں چودھری رخسار جی, ہمیں وہ بھی لینے پڑیں گے. ہم نا آج تھوڑی سی مختصر بات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سب کالرز کو انٹرٹین کر سکیں.
6: ٹھیک ہے
0: سوری, نہیں نہیں بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا.
6: اوکے
0: اوکے جی, اللہ حافظ. ہیلو,
8: सनराइज रेडियो।
0: हाँ जी सनराइज रेडियो।
8: जी एक सिंपल
0: जो क्वेश्चन सी है मेंटल हेल्थ दे बारे है ना। हाँ जी मेंटल हेल्थ दे बारे
8: ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਆ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸੈਂਟੀਫਿਕ ਆ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੇਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ
0: मतलब है कि शुरू ਨੂੰ किस तरह रेकग्नाइज किया जा सकता है किस तरह ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ
8: ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਨਾ
0: ਹਾਂਜੀ
8: ਬੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ
0: ਹਾਂਜੀ
8: ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
0: ਜੀ ਜੀ
8: ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰ ਆਫ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
0: ਜੀ ਜੀ
8: ਦੈਨ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
0: ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਨਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਕੇ ਹੁਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ
8: ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੈਬ ऐसा है कि डॉक्टर साहब हमारे पास और जैव हमारे पास तीन क्वेश्चंस आ चुके हैं और हमारा अज़ान का टाइम होने वाला है तो ऐसा है कि क्योंकि अब एक मिनट के बाद अज़ान का टाइम होगा अज़ान ब्रेक होगी तो मैं चाहूँगी कि हम अज़ान के फौरन बाद इन तीनों क्वेश्चंस का एक साथ जवाब दें तो जो कि हमें मुझे लगता है कि ये ही इतने वास्ट क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रोग्राम के एंड तक ले जाएंगे तो जी सामीन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल्स किए अगर आप अजान के दौरान भी हमें कॉल करके कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं चौधरी रुखसार साहब ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जो एम खान साहब ने भी और जो हमारे अभी कॉलर आए उन्होंने भी इसके अलावा हम क्वेश्चंस और ऐड करेंगे अगर आप हमें कॉल करना चाहें और बताना चाहें तो और उसके बाद हम एक साथ ही सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे जी अब हम बढ़ेंगे अपने अजान ब्रेक की जानिब कुछ ही सेकंड्स में और फिर अजान ब्रेक के फौरन बाद डॉक्टर साहब हमारे और जब हमारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे सुनते रहिएगा सनराइज़ रेडियो हमारे संग संग रहिएगा

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

اخبار. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम इन ब्रैडफोर्ड?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6, and 8-bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space, and style.
2: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
3: वेलकम बैक सामीन, हम वापस आ चुके हैं अजान ब्रेक के बाद। अब हम ऐसा करते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं और फिर हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया है 15 मिनट्स में, मेडिकल प्रोफेशनल्स से लेते हैं जो कि ऑन एयर हमें क्वेश्चंस मिल चुके हैं। पहले करते हैं टाइम।
4: सनराइज रेडियो, योर साउंड ट्रैक, योर टाइम चेक।
3: जी, इस वक्त स्टूडियो की घड़ियों पे हुआ है 1:45, यानी कि 1:45। जी डॉक्टर साहब और जैब, व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट विद? कि हमारे पास तीन क्वेश्चंस आए थे, तो जैब सबसे पहले आप बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन? या
5: Alhamdulillah, I was just going to say, like previously, like when you guys were having a discussion about people and like how the marriage goes on and so, I was just going to say, like, especially in the younger generation, I've noticed that we hum bahut jaldi trust kar rahe hain bande ke. We trust people very quick, we're very naive, we fall into traps very easily, and baad mein phir we regret karte hain. Jo banda, we trust people, wo bahut acha banda hai, we ye bahut acha banda hai, but what we don't understand is that that person might not have the right intentions towards us.
3: Yeah, ye baat to hai ki hame bahut soch samajh ke faisle karne chahiye aur itni jaldi trust nahi karna chahiye, lekin aisa bhi hota hai ki kai log jo is relationship trauma se guzre hote hain unke paas ek trust issue bhi aa jata hai, wo kisi pe trust karte hi nahi hai. I know someone, wo usne trust hi karna chhod diya hai, aur ek bahut jaldi kisi pe trust kar lena ya phir trust karna hi na, ye bhi mere khayal hai आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रॉमा का ही रिजल्ट है।
5: डेफिनेटली, दैट्स व्हाट लाइक वर्किंग इन मेंटल हेल्थ वी नोटिस दिस, अस वी सी इट डेली,
3: हां,
5: एंड इवन विद द पेशेंट्स विद स्टाफ, यू नोटिस दैट द ट्रस्ट इज अ बिग इशू, दे विल फॉल टुवर्ड्स वन पर्सन नॉट टुवर्ड्स अनदर पर्सन,
3: हां,
5: एंड आई रियलाइज दैट ट्रस्ट स्पेशली इन आवर एशियन कम्युनिटी, आई हैव नोटिस्ड एज़ वेल दैट ट्रस्ट इज मैसिव।
3: ट्रस्ट का इशू बहुत ज्यादा है।
6: मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ, हमारी सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये है कि हम स्पेशली मतलब ख्वातीन में है कि आपको किसी पर डिपेंडेंट रहना है, एंड दिस काइंड ऑफ को डिपेंडेंस इज सो मच इनग्रेन्ड इन द हेड्स कि उनको इसके अलावा और कोई एवेन्यू नहीं दिखता कि शादी और उसके बाद दूसरे पर डिपेंडेंस, दिस इज़ गोइंग टू बी द लाइफ गोइंग फॉरवर्ड। लोगों को पहले अपने आप को स्टेबल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो कि इन रिलेशन टू द थर्ड क्वेश्चन इज वेल, ये जो माइंडसेट है ये हमें बचपन से क्रिएट करना है। ठीक है, हम लोग एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहने को प्रेफर करते हैं सब कॉन्टिनेंट में हर जगह, लेकिन इस पूरे के अंदर हमारा जो एम होना चाहिए कि वो जो न्यू जनरेशन है उसको हम कैसे उठा रहे हैं, हम कैसा परवरिश दे रहे हैं, और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है कि वो अपने फैसले खुद ले सकें, और चाहे वो गलत हो सही हो उनको वो बेयर कर सकें, और फिर उन्हें इतना मजबूत बनाना है कि वो अपने आप में वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने होकर अपना डिसीशन ना क्रिएट करें, और इस चीज़ से उनकी जो जहनी मजबूती होगी वो उन्हें आगे के लिए लाइफ के ट्रॉमास के लिए प्रिपेयर करती है। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आप चाहे कितना भी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे दें अपने बच्चों को, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। माँ माँ और बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं, उनको पॉइंट आउट करके उनको बुली करने का और उनको उस चीज़ का ताना देने से बेहतर ये है कि आप ये देखें कि हर बच्चे का मिजाज मुख्तलिफ होता है, आप कैसे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट हो, बहुत सारे सिबलिंग्स हों, उसके अंदर कोई लेफ्ट आउट ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है. घर की फैमिली की डायनामिक्स कैसी है, इसका बहुत असर होता है उन लोगों पर जो कि आगे चलकर जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ गुजारनी है, दे विल हैव देयर ओन हाउस होल्ड. इस चीज़ को हम मद्देनज़र नहीं रखते और हमारे यहाँ रिस्पेक्ट के नाम पर और जो है वो जो बड़े कह रहे हैं वो बात सुनो इसके नाम पर बहुत सारी हद तक काफ़ी हद तक बुलिंग भी होती है, जिसके लिए हमें माइंडफुल होना चाहिए. अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करें और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ों को ही रिस्पेक्ट चाहिए, अपने बच्चों को भी रिस्पेक्ट करें. आज आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करेंगे, कल वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे. अगर आप अपनी औलाद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हाउ विल दे गोइंग टू रिक्वेस्ट द सेम व्हेन दे विल मूव ऑन एंड व्हेन दे विल हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन. जब उन्हें ये पता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, दे दिस विल शैटर देयर कॉन्फिडेंस एंड आगे चलकर वो कभी भी एक लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखेंगे. दे विल ऑलवेज रिलाई ऑन अदर्स, दे विल डिपेंड ऑन अदर्स. ये कमजोरी हमें शुरू से करनी है, चाहे वो हमारा स्पाउस हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हों. इस बात का ख्याल हमने सबने रखना है. इस तरह एक एक बेहतर फैमिली, एक स्टेबल फैमिली क्रिएट होती है, वो आगे चलकर अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बेहतर तरीके से कर सकते हैं.
3: बेस्ट आंसर, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जैफ एंड डॉक्टर अहमद. तो अब हम बढ़ते हैं एम खान भाई साहब के क्वेश्चन की तरफ कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो हमें किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए. एम खान साहब पूछ रहे थे कि हम उनके साथ कौन से ऐसे अल्फाज उनसे बोलें, उनसे किस तरह से बात करें इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी में, कि हमें हम किसी को हर्ट भी ना करें, बजाय उनका डिप्रेशन वो बढ़ाने के कुछ कम हो जाए. तो क्योंकि हम समटाइम्स ऐसे अल्फाज बोल देते हैं, कोई बेचारा पहले से डिप्रेस होता है तो उसका डिप्रेशन और बढ़ जाता है, बल्कि साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है कि ख्याल है तो वो एंगर में भी चला जाता है. तो ये एम खान साहब का क्वेश्चन था, तो हम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
6: खान साहब ने अच्छा क्वेश्चन रेज किया, ऑल्दो इट वाज विद काइंड ऑफ इन अ ह्यूमरस वे, लेकिन जो बातें जो टर्म्स उन्होंने कही हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ही डेरोगेटरी तौर पर यूज होती हैं. एक दूसरे को मजाक के अलावा बुलिंग के तौर पर माशरे में जहाँ जहाँ आप कॉन्ग्रीगेट करते हैं, वर्क प्लेस पे, यू नो, इन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, हम ये डेरोगेटरी तौर पर यूज करते हैं, किसी को पागल बोलना, मजनू बोलना.
3: एक्जेक्टली, चौधरी रुखसार साहब ने भी यही बात की थी कि क्या किसी को कह देना पागल, दीवाना, मजनू, ये वो, तो ये किस तरह से होता है कि हमें किस तरह से, अगर कोई बंदा मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन से गुजर रहा है या किसी मुश्किल चैलेंजिंग उसकी सिचुएशन है, तो हमें उसके साथ कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमारी टोन ऑफ वॉइस कैसी होनी चाहिए, कि हम ओवरली ये भी नहीं कर सकते कि सिंपथेटिक हो जाए ओवरली और वो ज़्यादा अपने आप को विक्टिम समझने लग जाए, उतना ही सिर पर चढ़ जाए तो हमें ऐसा करना किस तरह से रखना चाहिए कि एक न्यूट्रल सी हमारी टोन हो, हमारे बेस्ट वर्ड्स हों.
6: आपने ऑलरेडी कवर कर लिया, नाहिद, ये बात सही है. हमें मॉडरेशन में, हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी लगती है. जब आप पहली बात तो ये कि जो मैंने कहा कि रिस्पेक्ट करना दूसरे को ज़रूरी है, हमने अपने अपने कल्चर से अपने चाइल्डहुड में ये सीखा है कि अगर कोई इस तरह का है जिसका एक विजिबल डिसेबिलिटी है, उसको कुछ भी कह देना हमें अलाउ है. और अगर हम यू नो कि अगर कोई किसी के अंदर कोई नुक्स है, उसको बड़े आराम से उसका नुक्स बना दिया, उसको यू नो लूला लंगड़ा कह दिया, काना कह दिया, बहुत ठिगना कह दिया, उसी तरीके से पागल टर्म तो बहुत ही कॉमन है. और अक्सर लोग इसलिए दवा छोड़ देते हैं, जो हमने देखा है सर्विसेज में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए ये बात वाजे तौर पर हो कि ये तो दवाई पर है.
3: हाँ,
6: ये तो पागल
3: और है. एक लेबल लग जाता है बंदे पे और हम एक लेबल दे देते हैं और बहुत लोग लेबल से बचने के लिए अपनी उस कंडीशन को इग्नोर करते हैं या उसको अंडर द कार्पेट करते हैं या उसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर लेबल ना लग जाए या हमारे बच्चे पे लेबल ना लग जाए कि इसको ऑटिज्म है. अगर हम इसको कह देंगे कि इसके ऊपर इसको ऑटिज्म है या लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसके ऊपर एक लेबल लग जाएगा. तो हमें इसके लिए बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए कि
6: और ये चेंज जो है ना वो इंसान से खुद से शुरू होगा. सो जैसे कहते हैं ना कि आप चेंजेस हमें खुद अपने अंदर लानी है. माशरा हम ही लोग हैं, हम ही लोग मिलकर माशरा बनाते हैं. हम जब दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं तो कुछ उंगलियां हमारे अपनी तरफ पॉइंट आउट कर रही होती हैं.
3: एग्जैक्टली,
5: इट्स लाइक एग्जांपल देता हूं, या पैरासीटामोल, एवरीवन लाइक्स टेक टेक पैरासीटामोल, को जेब में पट के, दे टेक हैव देम इन देयर पॉकेट्स, दे वॉक अराउंड, एंड पैरासीटामोल इज कॉमन, बट व्हेन इट कम्स टू अ मेंटल हेल्थ ड्रग, दे हाइड. they're hiding, taking it. They don't want their mom, dad to know, brother, sisters to know that we're on this tablet.
6: लोग अस्पताल आते हैं अपने प्यारों से मिलने आते हैं वो बताकर नहीं आते वो अपने फैमिली में नहीं बताते कि किसी की तबीयत ख़राब है और वो अस्पताल में है हमने ये देखा है कि लोग छुपकर रात को विजिट्स के लिए आते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू नो देयर द पीपल दे नो कम्युनिटी
3: के उनका कोई मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में है
6: जब आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप दूसरे उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा सो द चेंज कम
3: एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस सब बहुत बड़ी बात है कि एक्सेप्टेंस आपने खुद एक्सेप्ट करना है कि आपके साथ सबसे पहले समटाइम्स किसी और अपने के साथ चल रहा होता है हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते सबसे बात होती है पहली एक्सेप्टेंस पहले डायग्नोज फिर एक्सेप्ट करना और फिर उसके बाद उस चीज़ को एड्रेस करना जब आप एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग डिप्रेशन में हैं या कुछ हमारे अपनी फैमिली में या किसी के साथ मेंटल हेल्थ इशू है तो फिर हम दूसरों से कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेंगे या वो हमारी हेल्प करेंगे अगर हम इसको एक बीमारी के तौर पर लें जैसा कि हमें बुखार हो जाता है कोई और प्रॉब्लम होती है चलो हद कैंसर लगा लो वो फ़ख्र से बता देंगे लेकिन जब आपके मेंटल हेल्थ की कोई इश्यू होती है तो वो आपको बताने में शर्म आती है एक बात मैंने कोटेशन पढ़ी थी कि आप सिर्फ उसकी परवाह करें जिसको आपके मरने से फ़र्क पड़ेगा अगर मेरे मरने से मेरे हमसायों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे वर्क प्लेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जानने वालों को कई दोस्त ऐसे हैं तो मुझे उनकी परवाह नहीं करनी मुझे सिर्फ उनकी परवाह करनी है जिनको मेरी डेथ से फ़र्क पड़ता है मेरी बेटियों को मेरी डेथ से फ़र्क पड़ता है मुझे सिर्फ अपनी बेटियों को प्रायोरिटी पर रखना है उनकी परवाह करनी है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है हम प्रोग्राम के आखिरी चार मिनट की तरफ पढ़ रहे हैं जिसमें हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि कैसे रेकग्नाइज की जाए अगर फैमिली में आपके घर में कोई बच्चा है या कोई फैमिली मेम्बर है जो कि आप देख रहे हैं उसकी मेंटल हेल्थ डिटेरिएट कर रही है या बच्चे में कोई ऑटिज़म के साइन नज़र आ रहे हैं या मेंटल हेल्थ के या फैमिली मेंबर के बड़ा हो गया है कोई और वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसको कैसे अर्ली स्टेज पे रेकग्नाइज करना चाहिए और हमें उसको रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए
6: तो अगेन अगर हम सिर्फ ऑटिज़म की मिसाल ले रहे हैं तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो माँ को बाप को शुरू के ही दिनों में दिख जाती हैं जैसे बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो डिलेड हैं स्पीच है आई कांटेक्ट है सोशल इंटरेक्शन है अजीब है लर्निंग थोड़ी सी डिलेड है और वो बच्चा स्कूल जाता है और कोई प्रॉब्लम्स जो घर में और स्कूल में सांझी दिख रही हैं तो इसको स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करना कि इसको रेफ़र करें बिकॉज हर स्कूल के अंदर नर्सेज होती हैं इसको रेफ़र करें ताकि इसका टाइमली असेसमेंट हो जाए और बहुत जल्दी और इसको ये कि इसे इग्नोर कर दें क्योंकि घर में चार बच्चे हैं और हर बच्चे पर तवज्जो नहीं दी जाती तो ये माँ बाप की गलती है ये माँ बाप की तरफ से फेलियर है सो दिस इज़ वेरी यू नो क्रूशल फॉर ऑल ऑफ द यू नो पीपल इन सब कॉन्टिनेंट बिकॉज हम चीज़ों को रद्द करते हैं कि चीज़ें वक्त के साथ सही हो जाएंगी जबकि चीज़ें वक्त के साथ पांच दफ़ा सही नहीं होती हैं तो इसको सही टाइम पे रेस करना स्कूल्स के टाइम पे रेस करना अगर बच्चे सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है हमने जितनी बुलिंग के वाकयात सेकेंडरी स्कूल में सुने हैं और जितना हमने वहाँ से लोगों की मेंटल हेल्थ वर्स होते हुए सुनी है दैट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल तो अगर हम चीज़ों को वक्त पर डील नहीं करेंगे और उनको सही सपोर्ट नहीं मिलेगी सही लर्निंग नहीं मिलेगी तो उनके लिए चीज़ें बड़ी हो जाएंगी और वो फिर आगे चलकर उनके लिए इस तरह की चीज़ों का बाइस बनेगी बुलिंग की हिस्ट्री के साथ बच्चा ट्रॉमा में रहता है आगे किसी चीज़ में एकेडमिकली अचीव नहीं कर सकता वो पांच दफ़ा होम स्कूलिंग में चले जाते हैं क्योंकि बच्चा स्कूल में जा ही नहीं सकता वेरी कॉमनली जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसे हम देखते हैं
3: एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है मैंने कई बार देखा है कि आप हाई स्कूल में बच्चे गए हैं और वो सेल्फ हार्म कर रहे हैं वो उनके बाजों पे कट्स नज़र आ जाते हैं या कुछ भी किसी भी तरीके का सेल्फ हार्म करना शुरू कर देते हैं बच्चे और पेरेंट्स को फौरन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके फौरन इसके बारे में रिएक्ट करना चाहिए क्या ख्याल है
6: हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है कि बच्चे को डांटा मारा माँ से बोला इसके ऊपर नज़र रखो ये क्या कर रहा है बजाय इसके देखने की कि ये किस जहनी अजियत से गुजर रहा है और उसको सही तौर पर एड्रेस किया जाए उसके बजाय हम उसका सख्ती के साथ उसको सद्देबाप करने की कोशिश करते हैं जो कि सही नहीं है सेल्फ हार्म के अलावा बच्चा अपने आप को आइसोलेट करता है वो अपना ख्याल नहीं रख सकता हम देख रहे हैं कि वो पहले अच्छा करता था अब वो पढ़ाई में भी नहीं है दोस्तों से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है किसी उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं रहा
3: पर्सनल हाइजीन में भी नज़र आता है
6: और उसके बाद उसकी भूख खत्म ख़त्म हो गई है, वज़न कम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो कि साइन करती हैं कि ये जो चीज़ें पहले बेहतर थी अब नहीं हो रही हैं। तो माँ बाप की तो सबसे क्लोज होते हैं, वो सबसे पहले ये साइंस पिक करते हैं, उन्हें सही वक्त पर, और फिर स्कूल की मदद भी हासिल करना और जीपी की मदद हासिल करना, उनको जो है सही रेफरल के थ्रू लेकर जाना, ये जो है पहली चीज़ है जो क्रूशल हम कर सकते हैं।
3: तो पेरेंट्स के लिए इसको हम कंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम होने वाला है, कि कंक्लूड ये करते हैं कि पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे ही वो एक अनयूजुअल साइन नोटिस करें तो वो स्कूल से फौरन कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि ये बात हो रही है, और या फिर अपने जीपी से बात करें और फिर उसका जितनी जल्दी हो सके उसको रिकग्नाइज करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अहमद और एंड जेफ फॉर कमिंग टू अस, और आपने इतनी अच्छी बातें की। हमारे कॉलर्स बहुत ही अच्छे, चौधरी रुखसार साहब बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, हमारे दो नॉन कॉलर्स थे उनके सवालात का भी बहुत शुक्रिया, और एम खान साहब आपके सवाल का भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस किए और जिससे बहुत ये जो कॉमन मसले हैं जिससे बहुत से लोगों को सबको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अहमद एंड जैफ फॉर कमिंग टू आवर शो। यूँ लगा जैसे एक घंटा बहुत जल्दी गुजर गया, तो मेरे ख्याल है ये ख़ास तौर पे जो मेंटल हेल्थ का टॉपिक है इसको पूरे 3 घंटे का होना चाहिए था। तो अगर हम नेक्स्ट टाइम ये शो करेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि हमें पूरे प्लीज़ 3 आवर्स दीजिएगा, लेकिन हमें बिल मत भेजिएगा प्लीज़। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी।
6: बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद, और आपका कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए, और आपको और आपके लिसनर्स को अल्लाह हाफिज़।
3: थैंक यू सो मच।
5: थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह विल सी यू सून।
3: जी समीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।
7: From the Sky News Centre at 2, an investigation's been launched into claims of a police officer using AI to create evidence. The Crown Prosecution Service is working with defence teams and courts potentially affected. The Derbyshire Force say an officer's been removed from frontline duties. 3 teenagers, including a 14-year-old boy, are being questioned on suspicion of the murder of a man in a park in Essex. The victim, who was 21, was attacked in Chelmsford last night. The King's official birthday has culminated in an RAF flypast above Buckingham Palace. Charles and Camilla were joined by senior members of the royal family on the balcony. Earlier, they watched the British Army's ceremonial prowess in central London. Royal commentator Jenny Bond says trooping the colour is full of pomp and pageantry.
8: It doesn't really matter what you think about monarchy or what you think about the royal family. It's a fantastic spectacle. It really is. All those horses' hooves thundering, the bands playing. 1,000 soldiers on parade.
7: In other news, both Iran and the US are talking up the prospects of peace. It's thought a series of proposals to end the war could be signed in the coming days. Sir David Beckham says he could never have imagined a working-class English soccer player would receive a star on the Hollywood Walk of Fame. He's been honoured for his influence on sport, entertainment and global culture. At the ceremony, Lady Victoria jokes how she assumed she was getting the star for Spice World the movie. Friend Tom Cruise praised the ex-England captain's discipline.
9: His is a Hollywood story. A boy who believed in something bigger than himself had to work for every opportunity he received and went on to influence his sport, shape culture around the world and create opportunities for generations who followed.
7: And red cards will no longer be issued for hair pulling in the Premier League. Now anything without excessive force will lead to a caution instead. That's the latest. I'm Leisha McKenna.

शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच अज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दियां गल्लां खूब होईयां, बड़े अरसे दे दिल घबराए हुए सन, तको तकी अफजल अख खुल गई, जाम कौसर दे लबां नाल

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10, ब्रैडफोर्ड 7230 30।

0: का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसुकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-3010 ब्रेडफोर्ड 7230-3010।

0: इन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफ्सेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: stunning collection of 4, 6, and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
0: Bellevue Residences.
1: Luxury, space, and style.
0: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्ला नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30

0: ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
2: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed. Indeed.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

0: party with us, man.
1: का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दाला, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बंगा नी कोई मजदूरी नी। ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सुना बेचना है।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दाला, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने।

0: नवी ब्रांच भी खोली है जिते हर किस्म दा किचन ते घरेलू समान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
0: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

0: ब्रेडफोर्ड में पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

बहुत मेहरबानी, एडी दूर आ गए, एडी वड्डी टिकट खर्च के, उस तो बाद तुसी इनाम भी दे रहे हो। मैं साडी पार्टी वालों तय दिलों सारे मित्रां दा बहुत बहुत धन्यवाद करना। लोगों पेश कर लगा मित्रां दी हिमायत। हाँ भाई,

ये सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार।

जागने ना होती, दुनिया के लड़कों की आत्मा सोनी कुड़ियों को रोती। मिर्जे ना होते, रांझे ना होते, तो कौन करता कुड़ियों को प्यार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सनफ सरदार।

कभी कभी कभी मेरे दिल में यह सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। हराम ज्यादा, इसमें प्यार है ज्यादा। साड़ी त्वाड़ी एदी ओदी, ये दुनिया को हमने सिखाई। इस कोलावरी डी की बारी तो बाद में आई।

कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, ये ख्याल जरा बार बार आता है।